शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मानमुख

सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए। प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए। सो शहो सच्चा विसरै त्रिग जीवन संसार। नदर करे ना विसरै गुरमति विचार। सतगुरु मेले ता

मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखिया गुर भाणा मन लैन। वडभाग

सब महे रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम, गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम, प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, घट घट रवया सोई, गुरमत सच पाइय।

हर चरण त्याय सब फल पाए मिटे आवन जान पाए भगत सुभाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई दिनवंत नानक गुर भरम खोया जत देखा तत सोई पत

गाओ मंगलो नित हर जन हो पुन्नी इच सबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरै न आवै जाई राम।

मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिन की गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसन

ज्यो हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे काम। एक ना करम है दे वडियाई एक परम भवै अभिमाना। बिलावल महला तीजा।

हर हर जगते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूके मन अभिमान कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

रहाओ अनेक जुगत कर बहुत बिचारो साध संग इस मन है उधारो मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई ता मिलिए जान ले मिलाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया बिलावल महला पंजवां।

ला पंजवा मृत सैसर ऊपर पशुआ नहीं बूझै बादशाह अहंकार महे मरना नहीं सूझै सतगुर सेव हो।

अवर काश सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रव आप, रोग मिटाए जीवालयन जाका वड प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तहारी, मन बांशत फल दित्तेन नानक बलिहारी। राग बिलावल

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश पुसैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम।

है, सब तृष्णा भुख गवाए, हरड़स पी संतोख हुआ, सच वस्या मन आए, सच ध्याए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए।

पंजवां पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंथ महाबीचार पंच दूथ है मंथ।

पछाणे। ऐसा ज्ञान विचारै कोई तिसते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत।

मांग है रिद मांग है हाथ पसारे हर जस जब जब वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उरतारे जे वड भाग हो है ता जपिए हर भौजल पार उतारे हर जन निकट।

फलत फलत होहे दोहें सुहेले, अचर्ज पुरख त्याओ रहा, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप, बैरी सब होवह मीत, निर्मल तेरा होवै चीत, सब ते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर

है भेवा, शब्द विचार गह है गुर सेवा, मन तन निर्मल अभिमान अभेवा, निर्मल मन तन निर्मल अभिमान।

गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हों मैं सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै सतगुर शब्द विचार।

जे कुटंब छोड़ पर पवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है। इहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इस मह रोग वड्डा तृष्णा माया।

संत हो, सतगुर खेप निवाही संत हो, हर नाम लाहा दास कौ दिया, सगली त्रिशन उलाही संत हो रहाउ।

संत प्रभ विपत निवारण तिस बिन अवरना कोहे जियो सदा सदा हर सिमरिया जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे।

कस कस वट्टी सह सोताओ नदर सराभ वन्नी चढ़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करतै करनी कर पाई जिन कीती तिन कीमत पाई होर क्या कहिए किश कहन ना जाए।

कौन सुआउ। साच कहो अरदास हमारी, हो संत जना बल जाओ। कह बह सहो कह रही है बाले, कह आवहो कह जाहो। नानक बोले सुन बै रागी, क्या तुम्हारा राहो। कट कट वैसे

चारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरु।

साथ समावै गुरमुख परचय वेद विचारी गुरमुख परचय तरिय तारी गुरमुख परचय सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचय अंतर विद जानी।

कवन मुख चंद हिवै कर छाया, कवन मुख सूरज तपै तपाया, कवन मुख काल जोहत नितर है, कवन बुद्ध गुरमुख पतर है, कवन जोत जो काल संहार है, बोले बाणी नानक बीचार है, शब्द भाख।

सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय भवजल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिय, तिस कहो कवन अधारो।

नारद बचन सब श्रेष्ठ करेन सच लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पे नानक आए से परवान पे जे सगले कुल तारेन महला तीजा

शब्द रवै सब घट मेरे हों सबना अंदर जिस है खुआई तिस कौन कहे जिस है दिखाला वाटड़ी तिस है पुलावै कौन जिस है पुलाई पंध सिर तिस है दिखावै कौन महला पहला।

पौड़ी। मनमुख मोह गुबार है दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है माथ तत कढ़ोलै, अंतर प्रगा

पौड़ी सेजन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता गुरमुख सच्चा मन वसै सत सौदा कीता सब किश कर ही माहे है।

लागी सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संजम रव सस गहने देओ रे। सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पेओ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल इहे

हर हार हर उड़तारियो, जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम सुखदाता। सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

पंजवां प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किश अंत नाहीं पार रहाओ।

गुरुमुख सुरत समाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगाह पेंधे, गुरुमुख सुरत समाई।

सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा श्याम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पय सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाई, नानक गुर परम चुकाया। गुरमत

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक कौ जोग।

यो पव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मारे गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत।

पूरक मन हाथी पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों गुर शब्द महारस पाया कुदरत देख रहे मन मानिया गुर शब्दी सब

शब्द मरै सोई जन पूरा, सतगुर आप सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा, मन पीवै पाए सुपाई हे।

अंत सब किछु सूझै अज्ञानी अंध कमाई हे। मनमुख सहसा बूझ ना पाई, मर मर जम्मै जन्म गवाई।

नवनज नाम बसया कट अंतर छोड़िया माया कालाहा हे। रैयत राजे दुर्मत दोई बिन सतगुर सेवे एक ना होई एक ते आयन

बनाई। गुरमुख होवै सो काया सो धै, आप है आप मिलाएं दार। काया विच तोटा काया विच लाहा।

आनंदन गुण रव है दिन राती, आनंदन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरण सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर

सहजे गुण रह दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उड है न मूले न आव है न जाही निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विचार है।

गुण निदान मंतन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पभया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

आदि मध अंत प्रवरवया कृष्ण बुझी परम अंगनां गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सद बख्शंद गुर जप जा।

अगन मह जिन्हें उबारिया रखत गर्म मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।

दरियाओ तृष्णा थकी नानका जामन रत्ता नाई लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाए जीव रसायन चूनड़ी रत्ती लाल लवाए अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी इस जोग महना

हर अगम अगाधा निःचल नाम निदान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा सच

सच शाह अडोले सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनो तोले पन्नन करण समर्थ है ओपत सब पर ले करण कारण समर्थ है घट घट सब बोले रिजक समाहे सब सह क्या मानस डोले गहर गंभीर अथा तू गुण ज्ञान अमोले।

शब्द बिन कबहु न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी गुरुमुख राम जपहो रस रसना।

हम मूड मुगद किस बूझ है नाही, तू आपे देह बुझाई, जो तुद पहावे सोई करसी, अवर ना करना जाई।

मन तन हरिया सहज सुभाए, नानक नाम रहे लिवलाए। बसंत महला तीजा, भगत वछल।

गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साब तरास उबरया। पाखंड भरम उपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख

ओडा कूप गोज खिन काढ़ जो ओडा कूप गोज खिन काढ़ त्यो सतगुर वस्त लहाई है। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है। जन्म पदार्थ पुन फल

सहज अवल धूड़मणि गाडी चालती, पीछे तिनका लेकर हांकती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती, सर धोवन चाली लाडली रहाओ, तो भी धोवै बिरह बिराता,